0: सगल समगरी अपने सूत धार नानक जिस जिस भाव तिस तिस ने सतार
1: कई कोट राजस कई कोट वेद प्राण सिमरत।

0: प्रभु के सेवक को न पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊँचते ऊँचे।
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक को सेवक दे।

0: मन संतोष आतंपति हने।
1: पूरा गुण अखियो जाका मंत्र, अमर दृष्ट पेखे हुए संत।
0: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस।

0: हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अपरा नाम जपावो
0: भक्त भाई धरिए संसार बिन भक्ति तन होसी सार
1: सर्व कल्याण।

0: जी सत्संगत मिले सो तरिया
1: गुर प्रसाद परम पद पाया सुखे काष्ट हरिया रहा
0: जन पिता लोक सत बनता कोई न किसकी तरिया।

0: सकल प्रजाजनी आप सवारी
1: सकन कौसव गण सुख दियो
0: सकलन को बल मोहबत कियो
1: कट कट के अंतर की जानत
0: भले बुरे की पीर पछानत
1: चीटी ते कुंचर्य स्थूला
0: सब

0: परख जमन भग परे तिहारे
1: इनके तुम संकट सब डारे
0: जो कल को एक बार तय है
1: ताके काल निकट नया है
0: इच्छा होए ताहे सब काला
1: नष्ट अरिष्ट तरह तत्काला
0: कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो
1: ताके ताप तनक में हर हो
0: रेत सिद्ध कर्मो सब होए।

0: महेश
1: कोटिंद्र ब्रह्मा के तेरा सस्क्रोर जलेश
0: दोहरा राम कथा जग जग अटल सब कोई पाखत नीत
1: स्वर्ग बास रग बरकरा सगरी पुरी समेत
0: चौपाई जो है कथा सुने अर गावे
1: दुख पाप ते निकर न आवे
0: सब पत की ये फल होई
1: आद ब्याज छुआ सके न कोई
0: सम्मत सत रह सह सपचावन
1: पाड़ वदी प्रथम सुखदावन
0: प्रसाद कर ग्रंथ

नासा प्रभु के सिमरन मन की मर जाए अमृत नाम अमृत माहे समाए प्रभु जी बस साधु की रसना नानक जन का दर्शन दसना प्रभु को सिमर से धन मंती प्रभु को सिमर से पाद मंती प्रभु को सिमर से जन प्रवैन प्रभु को सिमर से पुरुष प्रदायन प्रभु को सिमर से बेमहता जी प्रभु को सिमर से सर्व गिरा जी प्रभु को सिमरह से सुखवासी प्रभु को सिमरह सदा विनाशी सिमरंत विराग जन दयाल नानक जन को मंगल बल प्रभु को सिमरह से परोपकारी प्रभु को सिमरह तन सदहारी प्रभु को सिमरह से मुख सुहावी प्रभु को सिमरह तन शुभ व्यवहार प्रभु को सिमरह तन आत्म जीत प्रभु को सिमरह तन निर्मल जीत प्रभु को सिमरह तन आनंद तनीर प्रभु को सिमरह बस हर नीर संत कृपा ध्यान दिन जाग नानक सिमरन पूरे पाग प्रभु का सिमरन कार चूरे प्रभु का सिमरन कब होना चूरे प्रभु का सिमरन हर गुण बैन प्रभु का सिमरन सहज समान प्रभु का सिमरन

जिस जन कहो प्रभु दास प्यास अनंत को बैल पर जस सकल पुरख मह पुर प्रदान सा संजा को मिटे मन आवस कहो जो जान दीच सु गन गय सब दीच जाक मन हुए सकल गिरि न हर हन कट कट दीन मन अपनी ते पुरा मिटा न बिख सकल श्रेष्ठ।

जिह प्रसाद पीवन श्रीधर जला सबदय पावन पाव कमला जि प्रसाद भोग सब रसा सब समग्र संग सात बस दीन हस पाव करन नितर रसना सहित आगर संग रचना से दुख मूढ़ व्यापी नन काली प्रव्यापी

सब सगवन करतार करुणामय दीन विनती करय नान तुमरि कृपा कर संग सहाय सुवन चीर जो बैरायु दास प्रीत बरुआ के गृह पितर बसान कुमार रस

हस्त्या काम क्रोध विकरार मिथ्या रथ हस्तिया सब वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पीख हस्ता मिथ्या द्रोह मोह अपमान मिथ्या सुपुर कर्तव्यमान अस्थिर भगत।

जस्यंत्र बसन रंकार तस्य तरा संसार जो तुम पर तुम पर जाता नान कौन जान जन प्रात करो बिंदु पार बनम सब जान अपना किया आप मान आप है आप आप कर तुम वीरा कह दूर जनाब तुम कह बजाव तुम निरा उपाव से अनुसार दे रहे तो

सर्व सनिज प्रसाद रघुल रहत उमान सुख पाव हर हर जग कहत। जिस प्रसाद तिर सगर क्षेत्र ठाकि मन सरणि पार ठाकुर प्रभुता कह। जय प्रसाद तुझ को नाम पाहु जय मन सा सा सिमर प्रभु जी।

नवसारी जप साहबाग मिलत नारा गुरु प्रभपन महाराज तिर मन बनत बनाय उठत बैठत साधत सहत आई दसहत आज काल खाई हऊ हनन तिर रखा।

गाओ। प्रभु कृपा हो प्रकाश, प्रभु दयातिमान विगास, प्रभु कृपा हो प्रकाश, प्रभु दयाति कमल विगास, प्रभु सो प्रसन्न वसा मंस हो, प्रभु दयाति मातुतम हो, सर्व धन प्राप्ति मय आया, कछु न किन्हु लया, जित जित लाभ तित लग हर नाथ, नानक किनकै कछु न हाथ। श्लोक अगमा गाय तू पार ब्रह्म सोये, जो जो कह समय सुनमयुता, नानक बिनवंता साध जनक अचरज कथा, अष्टपति साध के संग मुखल होत, साध संग सगली कोत, साध के संग मिटया अपमान, साध के संग

साधु सुब ब्रह्म समानी साधु के संग गो जन्म लय साधु संग सदा पर फुल साधु संग वह वह पंच सत्संग मृद्र पुंच सत्संग सब गिरी साधु के संग मनोहर

सकल संसार ब्रह्म ज्ञान का रंग, ब्रह्म ज्ञान का भाषा, ब्रह्म संग, ब्रह्म ज्ञान का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञान का नाम

ब्रह्म ज्ञान का कथिया न जयाद अखियर ब्रह्म ज्ञान सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञान के मेद कौन बखान है ब्रह्म ज्ञान का तो ब्रह्म ज्ञान जाना है।

ब्रह्म ज्ञान की शोभा है। ब्रह्म ज्ञान बने नैन ब्रह्म ज्ञान सर्व का तन सर्वोक अवतार जो अंतर्नाम सर्व पीख भगवान निम सर निम ठाक नमस्कार नानक हुआ परस सगल निहतार अष्टपदी

ग्रहण करने जोग जुद पर सुई होग खिन्न महंता पोथा गुणरांत निष्पर वर हुक्मिता।

सब गाय दया नावरा में सर्व सुख होय बड़ भाग्य के सब प्राप्त होय। करण करावन कर्म करावन आप आप सदा सदा नान घर जाप कर्म करावन कर्म हार दूसरे हाथ कह विचार जैसा दृष्ट करे तैसा हुए जय।

जो काश करे सोई सुकुमार कुल काही फिर आजान कान बस आई तेरा संग लौट रही रा सलोक विपतंग राम नाम जाप हृदय वाहि नानक पाद सिद्धि कर जाय जिस वकर को अंत हुआ राम नाम संतन कर पाया ता जब मैं कुमार मूल राम नाम हृदय महतो लाद की पसंद है संचार।

नाम गतारी पुरिया सब पावना नाम के संगोत्र संस्रावना कर कर बज सावना नाम लाई नान के चौथे पाद महसो जन कर पाए रूप सात जाकर सात स्थान पुर सात केवल प्रदान करतूत सात सात जाकर बारण सात।

साधु जय सुनता भुजनार को साथ सब भुजनार साथ हाथ पाव सुर साथ रूप रहता है जनवाने कर्म प्राप्त न तन गुरु पुष्कर ने जा कर दा विश्वास प्रभाव तात तो की आनंद समान पर गटाया तात तो की आनंद समान पर गटाया पैती निरुपाव हुई बसाना जहतु उपजिया तुम्हारे समान बस

गौ शिव गजान शंख प्रभु का शिव नाम करंग शिव का प्रपाल नर शिव किरक निरंकार सुशिव क जह दया प्रभु धार नर सुशिव सा सुमार अपन जन का परता टाके अपने शिव के सर पर आके अपने दाह दि बढ़ाई अपने शिव का नाम जपाई अपने शिव किया पात रखता गात में तय कोई न रखे प्रभु शिव का कु ना पाहु चाह प्राप्त सेवक ऊच दे ऊचे जो प्राप्त अपने शिवालय नानक सो सेवक दह दह प्रगटाया नीति गिरी मह काल राख भस्म कर लश्कर को डाक

रस उपावेदन कोई अमृत पीवा मन सोहय पुरखा नाहि कर विनाश विजा कमन प्रगटिगंता साठ पहर हर का नाम दिय सजब दिय स सेवक दिय मूर्ख माया कसन अलिय मान महाराख हर हरि क अंधकार दीपक प्रकाश नैन क परम मोह दुख दह दिनाश तब तुम्हारे ठंड बरतय अंध वह दुख नाठ पाई जन मन के मिटे अंधि से साधु के पूर्ण अब दिय से पाव चूका निरुपा हुए बसे सकल व्याध मानते खया न से जिसका साधन कृपा तार शासन जब नाम रारे थे पाई चुके ब्रह्म का मन सुन नानक हर जा श्रवण निर्गुण आप सरगुण प्योह करा तार जन सगले मोह अपने चरत प्रभा बनाए अपने गुण त्याग पाए हर बिंदु जाना को सरगुण रंत्र को सोए ओत पूत रविया रूप रंग पय प्रकाश साध का संग राज रचना अपनी कलता हरि अनुभव अनुभव हरि सरोग साधना चाला बिन भजन विख्या सगरी शायर हर नाम कमावना नानक सुत अनुसार अष्टपद संत जना बिर करो विचारी सम नाम आधार और उपाय साब मीत बेसार चरण कमल रित में उतार करण कारण सो प्रभ सम्राथ दृढ़ कर कह नाम हरवाथ तन संचह वह भगवान तो संत जन कन रमन मंत्री का सरा कमन वह सर्व रूप नान मिट जाह जह तन को चार कुंड टूटता वह सो तन हर सेवा तु पाव जस सुख का नित बाछा मीत सो सुख साधु संग प्रीत जस सोभा कपर परि करण सा सोभा बाजार की सरणी अन की उपाय रोग न जाय रोग मिट हर वक्त लाय सर्व निदान में हर नाम निदान जब नान दब प्रवान मन प्रबोद हर का नाय दह दह ताव ताव ठाय ता को विघ्न लग को जागृत बसा हर सोए कालता तिठन हर नाम सिमर सिम सदा सुख

सिमर सिमर सिमर सकुपाय वह जप वह नाम जपाय वह पग पाय तर्ग संसार बिन पग दिव्य तन हो सी शार सर्व कल्याण सुख निद राम बूढ़ जात पाय विश्राम सब दुखावतना सुनन क नाम जप कुंता सुभ जी प्रीत प्रेम रह चा मन तनांतरि स्वाहर सुख मन बिकसा साध चरण दोये भगत जनक मान तन रंग बिरला को पाव सांगिक बह दीजा करमय गुरु प्रसाद नाम जब लया ताग उपमा कहि न जाय नान ग्रह सर्व समाय प्रभक संत दीन दयाल भक्त वशत सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रात पाल आदि पुरकार करता भगत जनक प्राण आधार।

आई नम हर गुण गाई अनकराज भोग बढ़े आई हर के नाम की कथा मन पाई व भोजन का प्रसंगी तरसना जापती हर हनीत परी सो कारण सुबात नवंत हृदय बस पूर्ण गुरमंत सात संप्रति हनवास सर्व सुखनान प्रकाश लोक सरगुण निर्गुण रंकार सुन समाधि या पापन किया नानका पिहि प्रजा बष्टपति जब अकारि हुका सनान दृष्टि तब अपन तब कहती होता जब तारी अपन सुन समाद तब वैर विरोध केश संकुमात जब इसका वर्ण की हन न जाब तो तब हर शोक कह कस व्याप्त जब अपन आप अपार ब्रह्म तब कह कसवत परम

सह होके सोए। जाब अवगत अगोचर प्राविकत चित्र गुप्त स पूछत लिख जगन्नाथ निरंजन अगोचर गधीता कंस टिकन बंधन बाधी अपना पाप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही अपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बन मैल कह के अत होता जह निरंजन निरंका निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शालिश दर लगत कह कीस जह जो स्वरूप जो संग समाव तह किस पूख कवन त्रवताव कर्म क्रावन करने नानक करते का नाह सुमार जब अपनी स्वभाव अपन संग बनाई तब कवन माय बाप मित्र सोत पाई जह सर्व कराया।

की राय विस्मर विस्मर विस्मार नानक अपनी गत जान आप जहाँ छाल शीत पीत समाया ऊह कस व्याप्त माया आप दीस तेहु गुण का नाह करवीस जह ई कह ई कई भगवंता तह कौन अचिंत किस लाग चिंता नेह अपना आप पति यार कौन कथ कौन सुन नेहा।

जह अवगत उपगत तह आप जह बसरा पासार संत प्रता दुह पाक आप है धन सुबह नुह बनी आप है गौत करे आनंद जूज आप है रा भोग निर्जोग जह पर्वत सपनाय लावे जह पर्वत पीर खिलावे।

जानिया जान लागा हरि कहलाए। तुसकी आस न व्यर्थ जाए, सेवका सेवा बनाए। कुंभुज परम पद पाए, हे ऊपर नहीं विचार। जाक मन बसया निरंकार, बंधन तोर पै निर्वैर। अंगन पूज गुर के पैरे, लोक सुखिए परलोक सहेले। नानक हर पवा पह मेले।

हरिदा भगवंत। तन तन तन जन आज प्रसाद सब जगत त्राय जनावन कह स्वाव जन के संकेत आव नाम आप मुक्त मुक्त कर संसार नानक दिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रव्यार दिया पूरा जग नाऊ नानक पूरा पाया पूरी के गुण गावस्पति पूरे गुरु का सन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमर गोविंद मन अंतर की उतरा चिंद आस अनित त्याग हतरंग संत जन की दूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहु साध संग अगन सागर तरहु हर तन की परलिहु भंडार नानक गुरुपुरे नमस्कार। केम कुसत सहज आनंद साध संग पाज परमानंद नरक निवार गोदार जियो गुण गोविंद अमृत रह पियो चेत चेत वह नारायण एक एक रूप जग रंग अनेक गोपाल दाम उदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कह आधार तुम श्लोक साध की वचन अमली कला लिहि रतन सनत कमावत होत उदार अवतार लोक अनहत

अनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जीओ।

संताम सं शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कलहकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रियनाद विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसास नमो बाक बंके अपंगी स्वरूपे नंगी नाम त्रिपंगी त्रिकाले नंगी अकामे एक अछरी चांद अजय अलय अभय अभय पूज अनास कास गंज पंजा लख पख अकाल दयाल अलेख अपेखा नाम काम गाह ढा न थिर माथे अनाथे प्रमाथे अजोनि मुनि नदागिन रंगिन रूपे न रेखे आ कर्म अपरमं अगंजे लेखे पुजंग प्रयात नमस्तु प्रणाम समस्तु प्रणास्य अगंजुल नाम समस्तु निवास इन काम विभूते समस्तु स्वरूपे कु कर्म पुरणासी सुधर्म विभूते सदा सच्चिदानंद सतन पुरणासी करी मूल कुनिंदा समस्त निवासी अजाय पति विजाय प्रिय में हरियं करियं करी मूल रही में चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते सुयं पव सुबं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विभूते दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाशाही दसवीं प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिद्धांत के देख विरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मात को ना देखे तो प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रत्ती बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग नू पतंग सुरंग सुवारे कोट तरंग कुरंग से कुत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बेद न्याव शीस न जात विचारे एते पय तो कहां पय भूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिं सती हजराज जारे भूत भविख भगवान के भूख तो कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पातु श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नाम दया तमदान सुसंजम ने मनेक सिख है वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जवान सुबान के पिख है कौन आहार जति जत धार सबे सुविचार हजार के देख है श्री भगवान भजे बिन भूप ते करति बिन एक ना लिख है सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माति मतंग गुणमान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड्डे बिरयार आ बिचारे सार की तार पछया तोर दे समलंद मवासन माते गजान के महान मलया गाड़े गड़ान के तोड़नहार सुबात नीचक चार लवया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सु एक दवया दानव देव फिनिंदन साचर पूत पविख पवान जपेंगे जीव ते जाल में थाल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैतन पापन कै भव पुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न करै जग सत्र सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद गदान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विसन सची पत अंत फसे जम पास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर ना देह तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भगत्यान लगायो न हाथ फिरी उली सास मंदर लोग ऊपर लोग गवायो बास क्यों बखियान सो बैठ के ऐसे ही सो बैस बितायो साच कहूं सुन ले हो सब है जिन प्रेम

कियो तिन्हीं प्रभ पायो। काहुले पाहन पूज धरियो सिर काहुले लंगरे लटकायो। काहु लिखियो हर वाचि दिशा में काहु पुछा को शीश नवायो। को भुतान को पूजित है पास को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया उर्जयो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। को भुतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो। पूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवीं कबो बाश बेनती चाओ पई। अमरी करो हादिर रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरण नमन रहे हमारा अपना जान करो प्रित पारा। हमरे दुस्सबै तुम कहो आपा दे मोहि बचाओ। सुखी बसे मोर प्रवारा सेवक सित बै करतारा। मोर चर्ज कर दे करिए सब बैरन को आसन करिए। पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याऊं जो बिर चाहूं सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सतर हमारे मारिय। आपा दमद अभरिय मन काल का त्रासन वरिय। हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करी हो रच्छा। राख मोय राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु चुन के हंता तुम हो परि चतुर्दशकंता। काल पै ब्रह्मा बप धरा काल पै शिव जु अवतरा। काल पै कर प्रसन्न प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी जोगी वेद राय ब्रह्मा ज्योति। जमन काल सब लोक स्वरा नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण बुझायो। आदन ते के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाण। चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दुष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए। साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने। घट घट के पट पट की जाने। जब उद तर्क करा करतारा प्रजा तर तब देह अपारा। जब या कर्क कर तुम कब हूँ तुम मैं मिलते तर सब हूँ जेते बदन से सब तारे। आप अपनी बूझ उचारे तुम सभी ते रहत नाल जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब याद नीलना दे संपदा का मूढ़। चारत भेदा जाको पेवना पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चीनत नह पे। बाप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो हे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा के बिसदा प्रथम संसारा। एक रूप अनु सुरूपा रंग राव कई भूपा अंड जजे रिच सेत जगीनी। उत बुझ खान बहर रच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट प्यो शंकर। एक कैठा सिगरी से दिखाया चंग पवा। जुगा सुरूप से जंग पवा परिच्छा मेरी किंग परो। सिख बार सिख संघर वो दुष्ट तय उठो तत पाता। सकल मलेच करो रण काता। जे आस कुछ तव सरनी परे तन के दुष्ट दुख तहवै। मरे पुरख जन पग परे ते हारे तन के तुम संकट सब टारी। जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निकट न है। हर चाहता सब काला दुष्ट रिष्ट गए तत काला। कृपा दस तन जय न हर हो ताके ताप तनक में हर हो। रे दुसे तो कर्म सब हुई दुष्ट छाछ वस बिना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल वास्ते ताई बारा। जिन नर नाम तिहारु कहा दार दुष्टों ते रहा कड़के। तुम्हें शरण त्यारी आपा दे लहु बारी। सर्व ठावर मोह सहाय दुष्टों ते लहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। क्लिबिक सकल देह को हरता दुष्टों ख्यन को छह करता। श्री अस्तु जप है दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला। मन बाछत फल पावे सोई दुख नाथ सैब आपत कोई। अड़ल सुने गुंग जो या सुरसना पावई। सुने मुड़ चित लाई चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नरके रह। हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई। संबत सत्र सहस पण जय अर्थ सहस पुंतीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रववारा। तीर सतत द्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।
पाए कहे जब ते तुमरे तब ते तुम आतरे नैया न्यो राम रहे पुराण पुराण ने कहे मत एक ना मान्यो समृत शास्त्र बे सब बहुभेद कहे हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तुहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाट कै।

अटके गयो तुहारो द्वार, बाहें कहे की लाज हस गोविंद दास तुहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुर तब पाया, सहज से ती मन बतियां बधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां।

मैं पाया। हे मन मेरा तू सदा रोहरनाले हरनाल रहो, तू मन मेरे दुख सब सारण अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना। सबना गल्ला समरत स्वामी सोखे मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले।

नाम जिनके मन से अबाजे शब्द कन्हेरे कहे नान सच्चे साहब क्या नाही करते रहे। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शाम सुख मनायो सहजन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिट्टो जिस दियां एह वडियाईयां कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम रा आधारो वाजे पंच शब्द कर सभागे कर सभागे शब्द वाजे कला जित करतारिया पंच दूत दवास कीते काल पंच कुमारिया तुर कर्म पाया तुझन को से नाम हर कह लागे।

पूजा कर कर लै, मूर्ति पूजा कर लै, दंडौत वंदना कर लै। लम्मे पै पै के पातशाह कहिंदे जिन्ने मर्जी मत्थे टेकी चल, हों हों करत बंधन मैं परिया, नह मिली है यह जुगता। पातशाह कहिंदे ने मैं करदा बंधना दे विच होर फसी जाना है। इन्हां तरीकियां दे नाल रब नहीं मिलना, रब तो एको तरीके ना मिलना। हार परयो स्वामी कै द्वारे, दीजे बुद्ध विवेक। जोग सिद्ध आसन चौरासी, ए पी कर कर रहे आ, वड्डी आर जा फिर जन्म, हर स्यों संग ना गहया। जोग मत धारण कर लै, पुराने जोगी आसन कर दे, उमरां वड्डियां वड्डियां कर लईयां, फिर जन्म मरण दे गेट दे विच पै गया, पर परमात्मा नहीं मिलिया। राज लीला राजन की रचना, करिया हुक्म अफारा, सेज सोहणी चंदन चोआ, नरक कोर का द्वारा। पातशाह कहिंदे ने राज लीला राजन की रचना, रब ने तैनू तख ते बिठा दिता, तेरा हुक्म चल रहा है, जब तू हुक्म करदा है दुनिया के लोग कहिंदे ने ठीक है जी, इस तरह ही होएगा। पातशाह कहिंदे ने जिन्ने मर्जी हुक्म चला लै, पर मालिक दे चरणा दे विच सुरत नहीं जुड़ेगी। सेज सोहनी चंदन चोआ, नर कोर का द्वारा, हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै करमा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लह। सारे कर्मा बारे गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने बख्शिश करके लिख दिता, दुनिया के लोग आ कर दे आ कर दे आ कर दे। पातशाह कहिंदे ने सारे कर्म परमात्मा दे चरणा विच प्रवान नहीं होणगे। हाँ, एक कर्म कर लई, वह केड़ा? हर रोज संगत विच आ के उस परमात्मा की कीर्ति कर लई। हर रोज संगत विच आ जाया करी, हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै करमा। सारियां कर्मां नालों उत्तम कर्म है संगत दे विच आना। जदों संगत विच आ के उस परमात्मा की भगती करेगा, फिर तेरे ते वह बख्शिश हो जाएगी, जिन्हों गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी कहिंदे ने हार परयो स्वामी कै द्वारे, दीजे बुद्ध विवेक। कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लहना। संगत की प्राप्ति उन्होंने होंगी है जिन्हों के पूर्वले कर्म जाग जाते,

अनंत लाटू मदानियन गाह पंखी पौध लैन सूर्य चढ़ पवाई जंत नान पौद्या गणत नंद बंधन बंद पवाए सोए पाए कैरत नची सब कोई नच नच हसी।

ब्राह्मण खत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राप्त सुर शब्द एक शब्द जी को जाने पियो नानक का दास है सो इंद्र।

आवे ओ साध कूड़ी रात कूड़ा पार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दू नानक भरपूर मथे टिका तेड धोती तो खाई हाथ छोरी जगत साहे नील वस्त्र पैर में प्रवान मिले तान पूज प्राण अपाख्या का कोठा बकरा खाना चौके पर किसी न जाना दे कि चौका कड़ी कार उपराय बैठे कुड़ियार मात पेटे भी मात पेटे आन साडा फेटे तन फेटे बेट करेन मन जूठे चुरी परेन कहो नान सत्याई है।

जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दीन उरे अरसों गुरसों चटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह